0: महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के आधार पर विस्तारित हो रहा है। पर्यटन देश और राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक ताजिक नागरिक को इस दिव्य देश को उसके शिल्प, रीति रिवाजों, परंपराओं, सुंदर और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों, विशाल झीलों और पहाड़ों और ताजे व स्वच्छ जल से पूरी दुनिया को परिचित कराना चाहिए। ताजिकिस्तान गणराज्य अपनी खूबसूरत प्रकृति, फ्रेश हवा और पर्यटन स्थलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक ताजिकिस्तान में आते जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि पार्वती रामास्वामी ताजिकिस्तान में लगभग 2 साल के लिए इस पद पर काम कर रहे हैं और ताजिकिस्तान उन्होंने लिए बहुत पसंद है।
1: मेरा नाम पार्वती रामास्वामी है और मैं यहाँ ताजिकिस्तान में यूनाइटेड नेशंस की प्रतिनिधि हूँ और मुझे यहाँ 2.5 साल हो गए हैं और मुझे यहाँ काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं काफ़ी जगहों पे मैंने यूनाइटेड नेशंस के लिए काम किया है और हमारा हर 3-4 साल के बाद तबादला होता रहता है अलग अलग देशों में, और मुझे बहुत पसंद है ताजिकिस्तान। यहाँ के लोग बहुत ही नरम दिल के हैं और बहुत ही मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छा करते हैं, और ताजिकिस्तान जो है पूरे विदेशों में और पूरे दुनिया में अपने क्लाइमेट, एनवायरमेंट, पानी और हमारे जो बर्फीले पहाड़ होते हैं इन सब के बारे में खास तौर से जो है ग्लोबली लीड करता है। आपने देखा होगा इस साल मई के महीने में यहाँ पे ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन कॉन्फ्रेंस भी हुआ, जिसका सहयोग हमने बहुत किया है यूनाइटेड नेशंस और मेरे ऑफिस ने खास तौर से, और यूनाइटेड नेशन के जितने भी यहाँ पे एजेंसीज हैं सब अलग अलग विषयों में काम करते हैं, चाहे वो खाने के बारे में हो या तंदुरुस्ती के बारे में हो या औरतों की तरक्की के बारे में हो या सब लोगों की नौकरियाँ और पेशे की बात हो, इन सब में हम लोग काम करते हैं। तो मुझे यहाँ के लोग, यहाँ की मेहमान नवाजी और यहाँ का जो डेवलपमेंट का मुद्दे हैं ये बहुत ही सही लगते हैं यहाँ के कंट्री के नीड्स के हिसाब से, यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से। सो मेरे ख्याल से सरकार का जो विकास का जो प्लान है वो बहुत ही सही प्लान है और हम सब सरकार के साथ हाथ मिला के साथ साथ में काम करते हैं।
0: प्यारे सुनने वालों, यहाँ हम आपको श्रीमती पार्वती रामास्वामी के बारे में जानकारी प्रस्तुत करती है, हमारे साथ रहे। संयुक्त राष्ट्र 16 मार्च प्रति मुल्क कविल मद्दाम रामास्वामी पार्वती को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंस कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त किया है। पार्वती ने तुर्की और अफगानिस्तान में विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभाई थी। गुतेरेश के प्रवक्ता ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पार्वती ने महासचिव द्वारा नियुक्त मेजबान सरकार की पुष्टि के बाद ताजिकिस्तान में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर का पद संभाला। बयान के अनुसार श्रीमती पार्वती के पास विकास व मानवीय क्षेत्रों में रणनीतिक योजना तैयार करने, जोखिम प्रबंधन, लोगों से काम कराने, संघर्ष विश्लेषण और मानवीय पहुंच आदि क्षेत्रों में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। इससे पहले पार्वती तुर्की में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की प्रतिनिधि और कंट्री डायरेक्टर थी। इस दौरान उन्होंने वंचित वर्ग के लोगों के भोजन व पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम किया। पार्वती ने भूकंप प्रभावित लोगों को आपातकालीन सहायता प्रदान करने के सरकार के प्रयासों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र बहुक्षेत्रीय प्रतिक्रिया कार्यक्रम में सक्रिय रूप से योगदान दिया। ताजिकिस्तान अपने स्वादिष्ट भोजनों में सारे जहान में मालूम मशहूर है और यहाँ श्रीमती पार्वती कहती है,
1: मुझे बहुत पसंद है यहाँ का भोजन। मुझे खास तौर से जो ताज़ी सब्जियों का सलाद बनता है, सूप बनता है, और अलग अलग रीजन का जो खाना खास है वो भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ताजिकी पुलाव बहुत पसंद है, खास तौर से जिस तरह से नवरोज की टाइम पे या खास प्रोग्राम के टाइम पे जो पुलाव पेश करते हैं हम, मेरे को बहुत पसंद है और मैंने काफ़ी पुलाव खाया। हमारे हिंदुस्तान में भी पुलाव बनता है, मैं अफगानिस्तान में भी काम कर चुकी हूँ, अफगानी पुलाव भी मैंने खाया है, समरकंदी पुलाव मैंने खाया है। तो मुझे लगता है कि खास यहाँ के जो खाने के पदार्थ हैं और खाने की सामग्री है काफ़ी अच्छे से लोग यहाँ यूज़ करते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ हमारे मेहमान भी आते हैं उनको भी हम लोग पुलाव खिलाने ले जाते हैं और बाकी शाश्लिक वगैरह जो यहाँ का खाना है। नहीं, यहाँ के नान भी बहुत मशहूर हैं और मुझे भी नान बहुत पसंद है, और नान और छक्का हम लोग खाते हैं जहाँ भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं। और जैसे कुजांड का जो नान है वो

हस्तनिर्मित शिल्प उपादायों के 5000 अधिक नमूने उदाहरण के लिए प्राचीन दाने और सजावटी कला पाया जाता है। कुलबुक नगर से पाए हुए उत्पादों के नमूनों में से पुरातत्वविदों को सबसे पहले जानवरों के हड्डियों मिला है। चित्रों के निष्कर्षों की दीवारों का विशेष महत्व दिया जाता है। अधिकांश वैज्ञानिक जैसे समझते है कि मध्य एशिया में इस्लाम के विस्तार के साथ कला के सहपतियाँ गायब हो जाती है। लेकिन 11वीं सदी में नाहकी लेखक के कहने के अनुसार ऐसे चित्रकारी गजल के महल और अफगानिस्तान में मौजूद है तथा इसके कहने के अनुसार कुलबुक में समकालीन निर्माण वस्तु को पुष्पी करती है। आप कुलबुक नगर के ऐतिहासिक स्मारकों के निष्कर्षों के लिए धन्यवाद। निष्कर्ष पाया जा सकते है कि मध्य एशिया में मध्यकालीन कला की भी मौजूद है। इसके अलावा कुलबुक में बहुत ऐतिहासिक चीजें कांस्या और पांच से काउंटर पाए गए हैं। हथियार के हड्डियों बना हुआ शतरंज बहुत ही बेमिसल है। इसके अतिरिक्त पत्थर के उपयाऊ भी पाई गई है। निचली महल 9 और 10वीं सदियों में और उत्तरी महल 11 और 12 सदियों में अस्तित्व किया गया था।

Ulbog me oniso tirpan aur oniso chovan me puratattvik karya kiya gaya hai. Saath hi san 1957 aur 1994 me Davidovich aur Litvinsky dwara aur san 2003 se 2006 tak Yakubov Tarase bhi usse kaam kiye gaye the. Kehne ka laiq hai ki Tajikistan paryatan ke parikshay se duniya ke sabse vikasit deshon mein se ek hai. Prativarsh desh ke ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थलों के देखने के लिए सैकड़ों यात्राओं तजिकिस्तान में आते जाते हैं। इसको देखकर शांति और राष्ट्रीय एकता के संस्थापक रशा के नेता तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इमोमाली रहमान ने देश में सन 2019-2031 को ग्रामीण पर्यटन और लोक शिल्प विकास का वर्ष घोषित की। आजकल तजिकिस्तान के इर्द गिर्द इलाकों में अतिथियों और पर्यटकों के लिए सभी संभावनाएं بنی گئی ہے. تجکستان کے راشپتی مالی راموں کے آدیش سے دیش کے سبھی نگروں اور گاؤں کے اتحاسک حال پر نرمان اور جیوت ہو گئی.

स्वतंत्रता राज्य का प्रमाण है। पूर्व अधिकारिक और सप्रभुता राज्य की व्यवस्था और राष्ट्र की महानता है जो देश के घरेलू और विदेश नीति अर्थव्यवस्था सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को बढ़ावा देती है।

Ис рождани коек мазбут раджнитик уркутанити кендер бана диахи. Халки варшоме душамбене каи антарашри кхел аюджанонки мезбани ки. Джинхоне из кшетерме антарашри сайо куркхелонке викас ко мазбут карнеме йогдан диахи. Джинме джудо пратиогитаин кафа футбол чемпионшип, самбо пратиогитаин куште теннис ор мишрит маршал арт пратиогитаин шамил хе. Е аюджан даршате хе ки दुशांबे इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण खेल केंद्र बन गया है जो खेल कूटनीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत कर रहा है। गेपाल ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट सन 2025 के अनुसार तजकिस्तान गणराज्य कानून और व्यवस्था सूचक में दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में पहले स्थान पर है जो सुरक्षा स्थिरता और कानून प्रवर्तन में नागरिक विश्वास को मापता है। वैश्विक सुरक्षा रिपोर्ट सन 2025 पर आधारित एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि तजकिस्तान के निवासी रात में सुरक्षित महसूस करते हैं और इन्हें कानून प्रवर्तन पर पूरा भरोसा है। याद दिलाना है कि तजकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां और मान्यता तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति राष्ट्र के नेता महामहिम इमोली रहमान की सफल नीतियों का परिणाम है। देश के नेतृत्व की पहल और निरंतर कदमों ने देश में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में योगदान दिया है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तजकिस्तान की प्रतिष्ठा और भी मजबूत हुई है।

हस्तनिर्मित शिल्प उपादायों के 5000 अधिक नमूने उदाहरण के लिए प्राचीन दाने और सजावटी कला पाया जाता है। खुलबुक नगर से पाए हुए उत्पादों के नमूनों में से पुरातत्वविदों को सबसे पहले जानवरों के हड्डियों मिला है। चित्रों के निष्कर्षों की दीवारों का विशेष महत्व दिया जाता है। अधिकांश वैज्ञानिक जैसे समझते है कि मध्य एशिया में इस्लाम के विस्तार के साथ कला के सहपतियाँ गायब हो जाती है। 11वीं सदी में नाहकी लेखक के कहने के अनुसार ऐसे चित्रकारी गजल के महल और अफगानिस्तान में मौजूद है तथा इसके कहने के अनुसार खुलबुक में समकालीन निर्माण वस्तु को पुष्पी करती है। आप खुलबुक नगर के ऐतिहासिक स्मारकों के निष्कर्षों के लिए धन्यवाद। निष्कर्ष पाया जा सकते है कि मध्य एशिया में मध्यकालीन कला की भी मौजूद है। इसके अलावा खुलबुक में बहुत ऐतिहासिक चीजें कांस्या और पांच से काउंटर पाए गए हैं। हथियार के हड्डियों बना हुआ शतरंज बहुत ही बेमिसल है। इसके अतिरिक्त पत्थर के उपयाऊ भी पाई गई है। निचली महल 9 और 10वीं सदियों में और उत्तरी महल 11 और 12 सदियों में अस्तित्व किया गया था।

कुलबुग में 1953 और 1954 में पूरा तजवीद कार्य किया गया है। साथ ही सन 1957 और 1994 में दविदोविच और लिटवेंस्की द्वारा और सन 2003 से 2006 तक याकूबोव तरह से भी उसे काम किए गए थे। कहने का लायक है कि तजिकिस्तान पर्यटन के परिप्रेक्ष्य से दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है। प्रतिवर्ष देश के ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थलों के देखने के लिए सैकड़ों यात्राओं तजिकिस्तान में आते जाते हैं। इसको देखकर शांति और राष्ट्रीय एकता के संस्थापक रशा के नेता तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इमोमाली रामो ने देश में सन 2019-2031 को ग्रामीण पर्यटन और लोक शिल्प विकास का वर्ष घोषित की। आजकल तजिकिस्तान के इर्द गिर्द इलाकों में अतिथियों और पर्यटकों के लिए सभी संभावनाएं बनी गई है। तजिकिस्तान के राष्ट्रपति माली रामो के आदेश से देश के सभी नगरों और गांवों के ऐतिहासिक स्थल पुनर्निर्माण और जीवित हो गई।

स्वतंत्रता राज्य का प्रमाण है। पूर्व अधिकारिक और सप्रभुता राज्य की व्यवस्था और राष्ट्र की महानता है जो देश के घरेलू और विदेश नीति अर्थव्यवस्था सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को बढ़ावा देती है।